सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरीए, सतगुरु होए दयाल न कब हूँ झूरीए, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम, रेडियो उड़ान जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान, रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: जुड़े हो तुसी रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे नाल। स्टूडियो दा नंबर है 647-367-5353 647-367-5353। एक नंबर तुहानू होर देईए 416-525-7400 416-525-7400। रियल एस्टेट दे विच जानिया पहचानिया नाम इंदर अरोड़ा ते रमन कथूरिया। तुसी कोई प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी कोई वेचनी है तां इन्हां दे नाल संपर्क कर सकदे हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल बड़ी फेयर डीलिंग इन्हां दी है। तुहाडी प्रॉपर्टी कोई लैण वेले या देण वेले, तुहाडी मॉर्गेज दे बारे, तुहाडी डाउन पेमेंट दे वेले या कोई होर डाकूमेंटेशन जिस दी भी जरूरत हुंदी है बहुत डिटेल दे विच तुहानू जानकारी देंगे। बिल्कुल फेयर डील दे नाल फोन नंबर नोट करो 416-525-7400 416-525-7400। सत श्री अकाल जी खलील जी, क्या हाल चाल है
1: जी? सत श्री अकाल, बिल्कुल ठीक हूं दर्शन साहब, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
1: जी तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर है ह्यूमन, इंसान।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है खलील जी, आप तो बिल्कुल ठिकाने का ठिकाने पर पहुंच गए। मैंने तो सोचा भी ये थोड़ी सी बजारत तो मुश्किल होगी, इसका आंसर बड़ी देर में आएगा, लेकिन आपने तो तुरंत ही जान लिया ये। बिल्कुल सही बात है जी, जब बचपन होती है तो चार टांगे होती है। बड़ा फिलोसफिकल आंसर है इसका, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, कोई इसकी इतनी आसान भी नहीं है।
1: जी हाँ, फलसफी की किताबें बहुत पढ़ता हूँ मैं, इस वास्ते ये चीजें कभी भी जहन में रहती। हाँ। क्योंकि फिर जब होता भी तो आदमी तो बिल्कुल वैसे रहता ना, बच्चे की तरह हाथ पैर यूं करता।
0: जब बचपन में होता है ना, छोटे बच्चे की चार होता है, वो टांगों पे भी चलता है और हाथ लगा के भी चलता है। जब जवान हो जाता है उसकी दो टांगे हो जाती है, जब बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में लाठी आ जाती, फिर तीन हो जाती है उसकी।
1: जी जी, खुशी होती पागल ऐसी चीजें आप बताते वगैरह, लेकिन पढ़ाई का मुझे आज भी बहुत शौक है।
0: जी जी।
1: दर्शन साहब आप यकीन मानिए, आपके इतने मशहूर वकील थे हिंदुस्तान के, राम जेठमलानी नाम था उनका।
0: जी जी जी।
1: उनके जो उनके उनके जूनियर थे वो मुझसे बोलते थे, राम जेठमलानी साहब अक्सर बोले कि अगर खलील या दिल्ली में होता और वकालत करता तो मेरा जूनियर होता बोलते।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: जहानत की बात है, इंटेलिजेंस ही सब कुछ होती है, यानी पढ़ाई सब कुछ नहीं, यानी वकील दिमाग तो सबके पास रहता है लेकिन इस्तेमाल हो जाए तो बड़ी बात है। तो मुझे बड़ा दुख होता मैं पढ़ा नहीं बोल के ज्यादा, आज भी बेचैन हूँ। मेरी 35,000 बार बीवी से ऐसी बात पे लड़ाई होती कि तुम किताबों में घुसते, मैं बोला किताब ही तो सब कुछ है।
0: चलो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।
1: आपका भी जनाब, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
0: सो दोस्तों तुसी भी कोई गलबात करनी होए 647-367-5353। खलील जी ने बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिता कि एक चीज जिस दियां सवेरे, एक जीव जिस दियां सवेर वेले चार लत्तां हुंदियां, दोपहर वेले दो हो जांदियां और शाम नूं तीन लत्तां हुंदियां। बड़ी फिलोसफी कल जिया, बड़ा गंभीर जिया है सवाल भी है, ऐसे इहदा आंसर भी बहुत खूबसूरत के इंसान हुंदियां। इंसान वेखो जदों बच्चा हुंदा चार लत्तां हुंदियां, क्यों नाल ओह टंगा गोड्यां ते चलदा, नाल बच्चे दे अगे हथ भी लाउंदा, रिड़दा जदों क्रॉल करदा जदों बच्चा। दोपहर नूं जिंदगी दा, दोपहर जदों जवानी आ जांदी है तो उस वेले दो लत्तां ते ओह चलदा, दौड़दा भजदा। जदों शाम हो जांदी है फिर ओह वेखो जदों बुढ़ापे दे वेले दो लत्तां उसदियां अपणियां ते इक हथ दे विच डगोरी उसने पकड़ी हुंदी है। सो बहुत खूबसूरत सवाल भी सी, बड़ा खूबसूरत आंसर भी उसने दिता। सत श्री अकाल जी 4133।
2: अगलिए
0: नी पिछलिए,
2: हाय नी विचलिए,
0: हाय नी विचलिए, बस एनी की है।
2: हां जी, लाइफ ही अपनी लाइफ। हाँ
0: अच्छा, नहीं तो तुसी आंसर नाल क्यों दे रहे हो? आपां श्रोतियां नूं पुछना सी, तुसी आंसर आप ही देता कि अपनी लाइफ ही है। अगलिए नी पिछलिए, हाय नी विचलिए, हाय नी विचलिए, विचली मतलब विचकारली नूं आदमी पछताउंदा ना, जदों यंग एज बीत जांदी है ना तो आदमी नूं अफसोस हुंदा।
2: नहीं मैं तां जवाब दां, मैं टाइम बहुत लग जांदा, चलो मैं दस्सी
0: देवां, ओहदे नाल मिलदी जुलदी है जी के
2: हां भी जिहड़ी जवानी ते बुढ़ेपा है ना, कहिंदे अगलिए ते पिछलिए ते जिहड़ी है ना ओह तां बेसुरत हुंदी है, बचपन वी सोझी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਓਹਨੂੰ ਤਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 647-367 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

और एक होर चीज हरी इलायची तुसी लेनी है एक पाउंड ता $20 दी लगी हुई है, एक पाउंड हरी इलायची $20 दी। बाकी घर दी किचन दी कोई ग्रोसरी कोई बर्तन चाहिए हो चाहिए होए, तो रेस्टोरेंट दी कोई ग्रोसरी चाहिए होए बर्तन चाहिए होए

जन की लाज रखाए, साथ संगत ते सब पल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलक पलक रब दोवे सवारे, हमरा गुण अमर गुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरत महला पंजवा, जी अजंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाए, अपने सेवक किया मेरा तै पूरण भई बढ़ाई।

हाँ सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय अली मदद। तो आपके लिए अब मौसम बहुत ही खिला हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो अभी बच्चों को भी साल के महीने के अखीर में छुट्टियां हो जानी है, और जिनके बच्चे ग्रेजुएट करेंगे उनको ग्रेजुएशन होनी है, उनको बहुत बहुत सारी बधाई हो। और अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, या फिर आपने कभी किसी किस्म की भी आपको बढ़िया फर्नीचर चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ब्लॉक में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए। फिर फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदना है तो बस अभी से ऑर्डर करके अपना ऑर्डर कीजिए। तो 905-799-0045-799-0045 पे आप इनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कॉल कर सकते हैं। तो फादर्स डे के लिए अगर आपने सोने की गहने, सोने की चेन्स खरीदनी है, आप और शादियां वर्सरी बर्थडे के लिए आपको गहने चाहिए, तो आपको जाना होगा अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मौजूद है वाल्टन एयरपोर्ट रोड पे। और जानकारी के लिए, ऑर्डर बुक करने के लिए, फादर्स डे के लिए या शादी एनिवर्सरी बर्थडे किसी भी मौके के लिए, तो आप 905-600-01-00 पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूवी करनी है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिएगा, उनके कनाडा घर में आपको मदद करते हैं मूव होने में, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं अपना ट्रक बुक करने के लिए, आज ही कॉल कीजिए 416-524-7604-1-6524-6704 पे आप एच मूवर्स को कॉल कर सकते हैं मूविंग के लिए, कहीं भी मूव करना है कनाडा भर में। और अब अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कर लीजिए 519-546-1260। तो आइए अब आपको एक बड़ा प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत सुनाते हैं आपको। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप कॉल कर सकते हैं बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, जो कि आपके लिए 1715 मिसिस आगा में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको गुरदास मान जी का गीत सुनाते हैं। जी हाँ, तो उनके जो गाने हैं, उनकी फिल्में भी हैं, पंजाबी फिल्म में भी उन्होंने काम किया है, तो गाने आपके लिए पेश करते हैं। और आपको कभी भी किसी तरह की भी आपको सोने के गहने लेने हैं, सोने की बाज लेनी है, तो अल मदीना ज्वेलर्स 905-600-1-00 पर आप अल मदीना ज्वेलर को कॉल कर सकते हैं। तो आप जरूर उनको कॉल कीजिए, पहले से ही आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी अपने ऑर्डर बुक करना है फादर्स डे के लिए, तो आप कर सकते हैं अल मदीना ज्वेलर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और अपने फादर डे ऐसा गिफ्ट, अपने डायमंड लेने हैं तो 70% ऑफ है अल मदीना ज्वेलर्स पे आपको। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये होता है कि गुरदास मान जी ने बढ़िया बढ़िया छल्ला उनके, वो हर एक जमाना था कि कहीं पे बजाया जाता था, दिन ऐसा नहीं होता था जब कि तुम छल्ले को, छल्ला वाला जो उनका गीत है वो

0: दुनिया मैं लोगा जी किया था, मेरी जान खुली की बिच लड़ी हुई। ओए लगती ना क्या
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जामा मिलनी और महाराज सिदूरी तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मिलनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रांटन, टेलीफोन 7999400।
2: जी हाँ, तो अब सुन रहे हो प्रोग्राम घर से सार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपने अगर किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो लंदन के आसपास के इलाके में। अगर आप रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो अब लंदन में मौजूद है। तो अगर आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप वहां पे उनको कॉल कर सकते हो। और ये जो उनका शोरूम है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो ये उनका जो गोर रोड पे लंदन में आप मास्टर कोलिजन डिपो की सेवाएं ले सकते हैं। किसी तरह की भी आपको सेवाएं लेनी हो तो आप वहाँ पे उनको कॉल करिएगा और हर तरह की सेवाएं वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं। तो ये जो आपके लिए गाना है ये मिस पूजा का है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपने फ्रिज तो वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, टीवी बढ़िया लेना है, आउटडोर फर्नीचर, किचन की गैजेट्स, या फिर आपने बारबेक्यू बढ़िया लेना है, फादर्स डे के लिए गिफ्ट लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव करने के लिए आपको आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आपको कहीं भी आपको मूव होना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो 416-524-704 तो आपने HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं मूव होने में और कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे आपके लिए। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा और वहां पे उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर के साथ।

पूरन काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राज राज ले हो भाई मेरे को प्रभु आ गए अरदास।

व्यापार धाम परमेश्वर सगले दो पिदाले गुरु पूरे की सरणी उबरे कानन सगल समाले मन जिन सिमरिया नाम आधारे ताप उतारे असल गुरु पूरे अपनी कृपा धार रहा सदा आनंद कर हा मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु गाखिया वड्डी वडियाई नानक करते की।

अपने जिए जंत आपे राखी जमे कियो हटार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सनी उबरा पाई

भाई मन तन शीतल हो संत हो हर हर नाम तिहाई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियना फल पाई रहाओ सतगुर पूरा ताप गवाया अपनी कृपा सहारी पात्र हम सब भय दयाल दुख मिटिया सब परवान सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पद राखी पन्ने सर उधरिया सब संसार

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-452-6600, 905-452-6600।
3: रियल एस्टेट दी

0: रहमत तेरी, नाम तेरा, सब कुछ जो तेरा, बस एक स्वास ही तेरे, तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल सारिआं नूं जी, मैं हाँ संतोष कौर और मैं अज दे दिन की शुरुआत करदी हाँ तुहाडे सारिआं दे सफर दे नाल। असीं तुहाडे नाल इस शो ते 10 to 1 inch ही जुड़े रहांगे एंड बहुत वधिया वधिया असीं अज गल्लां करांगे तुहाडे नाल। ते तुसीं सारे ने साडा शो सुनते रहना है। तो साढ़े स्टूडियो का नंबर हैगा 905-673-3337 905-673-3337। ते अज का दिन तुहाडे सारिआं लई बहुत सोहना होवे, बहुत ही वधिया टैंपरेचर है ते सोहना सोहना दिन असीं सोहणे सोहणे लोकां नाल शुरू करदे हां। ते साडे नाल हैगे आ साडे सब तो स्पैशल स्पोंसर तवा किशन तो। सो साडे नाल हैगे आ तवा किशन तो साडे परांठे वाले आंटी। सो आंटी जी, सत श्री अकाल, तुसीं ऑन एयर हो। हैलो
1: हैलो, हां जी, सत श्री अकाल जी।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ

बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है। म्यूजिकल ब्रेक्स छोटी छोटी ब्रेक्स आप जरूर लवेंगे क्योंकि प्रोग्राम दे विच तुहाडी पसंद दे सारे गाने चल रहे हैं, तो होपफुली तुम सारे इंजॉय कर रहे होवोगे। तो तुम ट्यून किया हुआ है देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो। मैं हाँ तुहाडी होस्ट मनप्रीत कौर तौर। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक मैसेज है तुहाडे सारयां दे लई कि आप एक चंगी कम्यूनिटी ता ही बना सकते हैं। कहें कि जे आप चंगे नेबर्स हुई है ना, तो नेबर्स आप चंगे किवें बनांगे, ताकि आप अपने जिहड़े आंढी गुआंढी ने उन्होंने अपनी किसी भी एक्टिविटी तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पहली गल तो। ते जेकर कोई तुसी अपने घरां दे विच वीकेंड्स ते सपोज है ना, या वीकडेज दे विच भी कोई गैट टूगैदर करदे हो, कोई गैदरिंग करदे हो, शोर शराबा थोड़ा जिहा घट करो। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाले कह रहे हैं कि एक्सैसिव नॉइज़ नूं थोड़ा डाउन रखो, ते जिन्ने भी अपने साइडवॉक्स ने या बाइक लेनस ने उन्होंने पूरा क्लीयर रखो, ब्लॉक करके ना रखियो बिल्कुल भी। तो जेकर तुहाडे घरां दे विच वेस्ट वगैरह हुण ज़्यादा हो जाता, गैदरिंग वगैरह करदे हो, अपने जिन्ना भी गारबेज हुंदा उन्हों इधर उधर सुट्टो ना बिल्कुल भी, तो उन्हों तुसी प्रॉपरली अपने बिन्स दे विच डिस्पोज करो, इधर उधर डंप ना करो, चाहे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है चाहे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्लीनिनेस पूरी मेनटेन करके रखो। तो स्ट्रीट पार्किंग लिमिटेड की हुई है 3 घंटे के लिए, जो तुम कि गड्डी पार्क करते हो स्ट्रीट के उपर 3 घंटे तो ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते, अदरवाइज टिकट मिल जानी है। तो रात के 2 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक 2 AM to 6 AM तुसी स्ट्रीट पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हुण मना आ, तो ये भी तुसी जरूर ध्यान रखो, अदरवाइज तुहानू पता फाइनस ब्रैम्पटन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इनक्रीज़ किए हुए ने। ये छोटे छोटे सिंपल एक्शनस ने बट काफ़ी वड्डे रियल डिफरेंसिस क्रिएट कर सकते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाओ, तुम एक देखोगे टाइटल स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस, ये तुसी पढ़ सकते हो पूरा प्रॉपर, तुहानू सारे बायलॉज जिन्हें भी हैगे नेगे वो तुहानू पूरा प्रॉपर इनफोरमेशन मिल जूगी। brampton.ca/bylaws तुसी गूगल के उपर सर्च करोगे तो तुहानू यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाके स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस ने जड़े उहदे विच पूरी डिटेल तुसी पढ़ सकते हो। तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के वलों ये मैसेज तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा। 3:12 के कुछ सैकेंड हो गए हैं। स्टूडियो का नंबर 905-564-4444 905-564-6444 के उपर तुसी कॉल्स कर सकते हो। तो मैं तुहानू जानकारी दे दें कि जेकर तुसी अपने घरां दे विच डक्ट क्लीनिंग कराने होने करवाना चाहते हो तो अकाल डक्ट क्लीनिंग दे नाल गलबात करो। ये फर्स्ट एवर कंपनी है डक्ट क्लीनिंग की अपनी कम्यूनिटी की, जिड़ी कि पिछले 40 सालों तो तुहानू सर्विस दे रही है। 7 दिन ओपन रहिंदे ने, बहुत ही प्रोफेसनल डक्ट क्लीनिंग ये करते हैं, पूरी स्पैशलाइज्ड ने ये अपने प्रोफेशन दे विच। जे तुसी अपने एयर कंडीशनर्स या फर्नेसिस नू रिपेयर करवाना होवे या इंस्टॉल करवाना होवे तां वी तुसी इन्हां दे नाल कॉन्टैक्ट करो। जिहड़ी इह डक्ट क्लीनिंग करदे ने अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट, रेगुलर प्राइस $250 है, $250, बट जेकर तुसी ब्रैम्पटन या मिसिसागा दे विच रहिंदे हो तां देश परदेश रेडियो दी रेफरेंस दिओ, $140 दे विच अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट तुहाडे लई इह डक्ट क्लीनिंग करके जाणगे $140 दे विच। इह ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा दे कस्टमर्स दे लई है, अदरवाइज रेगुलर प्राइस $250 है, $250 ये तुसी सर्विस ले सकते हो अकाल डक्ट क्लीनिंग तो। हरमिंदर सिंह जी नूं कॉल करो, नंबर है 416-710-0662 416-710-0662 दे उपर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अकाल डक्ट क्लीनिक दे नाल। नैक्सट फरमाइशी गाना बब्बू मान दी आवाज़ दे विच इंजॉय करो, सुंदरो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: AM530.ca. This is AM530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.
1: संगीत रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
1: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
1: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
1: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम अर्ज है। आज आपके दिलों पर मोहब्बत भरी दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। समीन, गम और खुशी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो धूप और छांव के साथ साथ जिंदगी के सफर के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए, मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए। मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, सोच का भी तो जरा थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए।

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उमदा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उमदा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।